पुराण जस उत्तम खट दर्शन गाल है राम शंकर करोड़ तैतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गाव।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

सदा सदा हरत्याय सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा रहाव अगन कुंट मह उर्ध लिव लागा हर राखे उदर मंझारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शडाव

खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी। सब आए हुक्म खसमा हो, हुक्म सब वर्तनी। सच साहेब साचा खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर।

सो धन गुरु शाबास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाई है हर हर तेरा

वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहं गुर प्रसाद राग सूही महला पहला चौपदे घर पहला भांडा धोए बैस धूप देवहो तौ दूध है कौ जावहो दूध कर्म।

केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो, केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो, शीश

मन मुख दज मरन जमपुर बधे मारिय है वेला ना लहन गुरुमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहज सुख रहन गुर का शब्द विसारे।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द बसे।

ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰੋ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ

सहज ध्यान कल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा की जय हर गुण सुनिए है अविनाशी क्रोड़ हस्त तेरी टहल कमावे चरण चल

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। इकना करम है दे वड्याई, इक भरम भवै अभिमाना।

कह मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधान बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

मेल मिलाए, गुरमुख राते शब्द रंगाए, निज कर वासा हर गुण गाए, रंग चलूले हर रस पहाए, इहो रंग कदे ना उतरे साच समाए।

पेखै करहि मह सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सदही लागा सहज ध्यान अन दिन गावै एको नाम इस जुग मह वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखां तह रहया समाई।

बलिहारे बिलावल महला पंजवा बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बस हो वड पागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना

सफल सो आया बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया साध संग सब दुख मिटाया रव रहया

रहाओ। खोजत खोजत खोजया ना मैं बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो।

रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाय अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै।

राम। जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम। हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम।

पाए। गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी।

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग का

फलत फलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहा उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म

खिन महवेश करहे नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मो माया कै मगन भया करहे विकार विथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत ले वह रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखें साकत मानं अभिमान पया जिस

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हम सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने महरा खै सतगुर शब्द।

सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया ए बनियाइया, कह नानक सुनहो संत हो, शब्द तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित करस पह गए, करस

तरह नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याएणा।

तुझे पहचान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुरु नाम दिया कुशल थिया।

शांत। प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोहे जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे।

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुर चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख।

है बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।

नारद बचन सब श्रेष्ठ करेन सच लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पे नानक आए से परवान पे जे सगले कुल तारेन महला तीजा

पौड़ी। मनमुख मोहगुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है मथ तत कढोलै, अंतर प्रगा

पौड़ी सेजन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सत सौदा कीता सब किश कर ही माहे है।

सुत संजम रवसस गहने दे सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस प्यो रे निचार धार चुवै अत निर्मल

हर हार हर उड़तारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपर पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख

मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रस महराते, तिस बहुड़ना कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्ब निधाना।

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही, अमृत नाम गुरु वडदाना, नाम जप हो सुख सारा है, सतगुर तुठा सच दृढ़ाए।

दायण देखै, अहनिस ज्योत निरंतर पेखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरै देखाया, सतगुर मिलह।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जोग

भावत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सिबाया।

यह भव जल जगत शब्द गुर तरियै अंतर की दुविधा अंतर जरियै पंच बाण ले जम कौ मारै गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरै भाग मिलाया।

आठी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी सब

है अंतर माया मोह गुबारा ज्यों सुपने सुध न होई है। एक पंचावार शब्द है लागे सतगुर आए।

है आन दिन गुण रवह दिन राती आन दिन गुण रवह दिन राती रसना हर रस पाया शब्द मर है से मरण सवार है हर के गुण हृदय उरतार है जन्म सफल हर

सहजे गुण रहे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है न मूले न आव है न जाही, निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार।

गुण निधान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पभया। दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

हे मन प्रतीत बनी प्रव तेरी बिरस गई हूं मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभु अपने जग में।

उपदेश तुट है सब बंधन, यो परम मोह पर जालना। जहरा खै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पलमाना।

तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिस है न आवे जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बेअंत गुसाई।

अविनाशी अवगत अगोचर सब सब किस तुझ ही है लगा। श्री रंग वैकुंठ के वासी मछ कछ कूर्म।

आखरा शराशरयत लेकम्मा वहो त्रिकत तर्क खोज टोला वहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया रतत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाई लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग महना

शब्द बिन कबहू न छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना, इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

पत खोई, बहले पेख पवह दिन राति, हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेव है।

बाद आप बिगड़या सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा मह मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग करता

नानक हरनाक्ष नहीं बिदारिया, अंध है दर की खबर ना पाई। नानक हरनाक्ष नहीं बिदारिया, अंध है दर की खबर ना पाई। राग पहरों महला चौथा, चौपदे घर पहला।

सो कृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चलै तुध नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जमजाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

रहा। काल युग में है एक नाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुरु सेव।

जवान निकट बुझ है सो बुरा क्यों करे, बिख संचय नित डरता फिरे, है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्तक कर्म लिखया ललाट, जिस मस्तक

हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यों पावे त्यों करहे निबेरा, द्वितीया नासत एक रहे।

आओ। तप्त बुझी पूर्ण सवयासा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा। अनहद शब्द अचर्ज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जहाँ कौ प्रगट पहे गोपाल, ताँ कै दर्शन सदा निहाल।

हम मूढ़ मुग्ध किस बुझे नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरहो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रहे।